0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: क्या आप कौंसल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274-488-777।
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
3: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
3: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
3: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274-477-257। दुबई ज्वेलर्स।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
5: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD9 5VR, 01274-491-442,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
6: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
6: मैनिंगम सुपर स्टोर।

सर पे नूरानी चेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले,

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
3: UK।
5: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 a.m. and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
3: ओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड दुल्हन वो जो पिया मन भाए
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
3: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
3: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
3: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
6: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
7: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिगम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिगम सुपर स्टोर मेनिगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
7: मेनिगम सुपर स्टोर

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679। UK।
5: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 a.m. and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428 349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनिंगम सुपर स्टोर

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679। UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

عرش کی زینب تم ہی ہو مصطفیٰ, فرشتے تو فرشتے, خود خدائے پاک کے

खुदा की खुदाई की वुसअत जहां तक, मोहम्मद की शान रहमत वहां तक, जहां तक खुदाई वहां

बंदे मैंने चाहा था वो बस्ती ओहद की वीरा, पर ये महबूब की मर्जी थी मिले इसको अमा। मैंने

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD88NG फोन 01274 477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 81/83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
6: दुल्हन वो जो पिया मन था
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार।
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनीगांव स्टोर। रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाल मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनीगांव सुपर स्टोर। मैनीगांव सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनीगांव सुपर स्टोर।

तक ऐब मेरे उते पाई पर्दा तेनु तेरी करीमी दा वास्ता जी। जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे ओनु किधरे गरीब ना आख बैना ओदे जेड ना कोई अमीर होवे। ओदे दर्दे गदावां दी की दसा करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे ओनी मंगदा तख्त ते ताज बरी जो

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
4: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
3: saferaider.co.uk।
5: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274-48777
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274-477257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274-491-442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX ऑन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनिंगम सुपर स्टोर

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679. UK.
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 a.m. and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार।
4: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
3: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274 491 442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: safewayrider.co.in UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD88NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
3: 01274201679। UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD9 4QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

था मसजूद है माबूद है तू, हर शह तेरी शाहिद है के मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 a.m. and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 4877
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428 349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनीगांव स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाल मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनीगांव सुपर स्टोर मैनीगांव सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनीगांव सुपर स्टोर

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
4: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679। UK।
5: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 4877
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428 349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955 55 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनिंगम सुपर स्टोर

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: safewayrider.co.uk।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोली है? सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट का मॉडल 299
1: पर खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Khanan Cancer Hospital is being built in London? Now, please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी मोजो मोहतरम सामईन इक्राम, ब्रॉडफ्रेशन रेडियो 1413 AM जुमा करीम की खसूसी नशरियात के साथ हम इस खूबसूरत जो कहते हैं सुहानी घड़ियों को आज जो है वो शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, और अभी आपके साथ टॉपिक जो है वो भी शेयर करेंगे। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677।

जी मौजूद सामीन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर। अब आयशा जी आपके लिए जो तिलावत कुरान पाक लेकर आई हैं, आपको पता है हमेशा की तरह हम आयतल कुर्सी और फोर कुल जो हैं, चारों कुल, इसका एक हमारे ऊपर तहफ्फुज़ हो जाता है, हम अल्लाह ताला की जो है प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और अल्लाह ताला के खूबसूरत और पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं। बिल्कुल आप मौजूद सामईन इकराम हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जो वर्ल्ड वाइड जो है वो चलता है, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठे हमारा नंबर मिलाएं 01274306677 और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो जाए। जी आइए अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं।

जी बिल्कुल मोज़ सामिन इकराम, ब्रेड फेडरेशन रेडियो 1413 AM पर आप जुमा करीम की खसूसी नशरियात आशा अख्तर के साथ समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट ब्रेड फेडरेशन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। अल्लाह करीम के फजलो करम और अल्लाह करीम की रहमतों के ज़ेरे साया अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो है हम अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करीम का ढेरों ढेर शुक्र कि उसने ये खूबसूरत साथें हमें नसीब अता फरमाईं कि हम अल्लाह पाक के साथ लौह लगा सकें। और मौजूद सामईन इकराम, आप यकीन करें कि जहाँ कहीं भी आप ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है समात फरमा रहे हैं और जहाँ कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीज़ा और बाबरकत महफ़िल पाक जो है वो सुनी जा रही है, अल्लाह करीम का उन घरों पर उन अफराद पर एक ख़ास करम है, रहमत है। और मैं ख़ुद अल्लाह ताला की इतनी ममनूनो मशकूर कि मेरे रब्बे करीम ने मुझे ये सआदत नसीब अता फरमाई कि मैं अल्लाह करीम के ये खूबसूरत जो बाबरकत जुमा करीम के लम्हात हैं, गड़ियाँ हैं, इनको समेटूँ। मौजूद सामईन इकराम, अब हमदे बारी ताला के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेश की जाती है।

बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया, बेबंदगी उरूज किया बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियाँ, कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियाँ, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया।

बन गई बात उनका करम हो गया, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई।

हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, हो गई मुझे अता मेरी खता से पहले, हो गई मुझको अता मेरी खता से पहले। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम भी क्या इसमें आज़म है। जहाँ कोई ना काम आए वहाँ ये काम आता है।

कमली वाले के कर्म की बात है, कमली वाले के कर्म की बात है, वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। लम्हा लम्हा है मुझ पर

गले में तौके बुरहानी है, गले में तौके बुरहानी है शाहे शाहे बता का। गले में तौके बुरहानी है शाहे बता का, भला ये कम है निशान मुझसे बेनिशान के लिए। क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला। अपनी किस्मत पे क्यों ना नाज करूं, अपनी किस्मत पे क्यों ना नाज करूं। लोग कहते हैं गुलामे शाहे बता मुझको, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला। मनम अदना सना खाने मोहम्मद, मनम अदना सना खाने मोहम्मद। गुलाम गुल मा ए अजल गुलामाने मोहम्मद, गुलामे अज, माजरत खाऊं, गुलामे अज गुलामाने मोहम्मद। क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला। बस इनको सफा कश्त बेचारा जुनून, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला।

दोनों आलम ने उनको गनी कर दिया। बहुत ही खूबसूरत शेर, और मैं तो कहूँगी कि हासले नात है ये शेर, बहुत ही खूबसूरत जी। कोई मायूस लौटा ना दरबार से, जो भी

न्याजी में लजपाल के हर गदा को सखी ने सखी कर दिया, इस करम का करूं।

खूबसूरतियों के चर्चे हों या दनक दनक के रंग, मौसमों का आना जाना हो या खैरात का बटना, करम के सिलसिले हों, मेहरबानियों की अता हो, वो रब्बे जुल जलाल देने में कभी भी कमी नहीं करता। उसके मैं हर करम पे कुर्बान सदके, वो रब्बे अजीम जो मेरी शाहरख के करीब है, वो रब्बे करीम, वो रब्बे अजीम माल के बहरो बरका, वो हर एक इंसान और हर जी रूह की हर हरकत से वाकिफ, मैं उस रब्बे करीम की शान पर कुर्बान, रब्बे करीम की शाने अजीमी के रब्बे करीम ने हमें दुनिया में भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, हमारी हर एक जो ज़िंदगी में पेश आने वाले हमारे साथ मामलात हैं, रब्बे करीम ने उनका ख्याल रखा। और दीने फितरत जिसे कहते हैं, इस्लाम है, हमारी नेचर में जो है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या हमारी रूह की तड़प और पुकार होती है, यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये बहुत ही खूबसूरत करम के सिलसिले रखे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बहुत ही खूबसूरत ये नातिया कलाम जो है, मेरा ख़्याल है कि मैं तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में ये जुमा करीम का जो होता है उसमें ये शामिल ज़रूर रखती हूँ। और लेकिन ये होगा कि डिफरेंट जो नात खां हैं उनकी आवाज़ में है, और यकीन करें कि वो नातिया कलाम, वो खूबसूरत कलाम कि जिसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपना खूबसूरत, मैं एक कहूँगी कि हिस्सा डाला, और बल्कि वो सारी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपके लिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए, और जहाँ पे मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इतनी पसंद आई कि एक जो मिसरा है वो साथ जोड़ दिया। आप समझ गए होंगे, अब मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ ही रखती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

जी मौजूद सामीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि ब्रॉडवेशन रेडियो 1413 AM पर जुमा करीम की बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी महफिल अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए यहाँ पे हम सजा के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगाह रिसालत से करम की भीख ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, उनकी निगाह करम और उनकी अताएँ समेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk है और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। यकीन करें कि आंखें जो हैं, आंखें बरसने को बेताब हैं, लेकिन इन खूबसूरत मोतियों को हम ज़रा समेट के संभाल के रखें, संभाल के रखें कि रब्बे हुजूर के, रब्बे हुजूर, रब्बे कायनात के सामने, रब्बे कायनात के हुजूर जब हम पेश होते नमाज की हालत में हो, दुरूद सलाम पढ़ रहे हो, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हो, तो फिर इन झड़ियों को बहने दें जितना भी बहती हैं, कि रब के बहुत करीब कर देती हैं ये झड़ियाँ। बरसात की ये झड़ियाँ जो हैं, ये आंसू बड़े कीमती, बड़े अनमोल, बड़ी इनकी वैल्यू और वक़्त होती है। आंखों में नमी को रहने दें, क्योंकि जिक्र खैर हो रहा है, वो आला अरफा हस्तियां कि जिनकी अल्लाह पाक अपनी शान खुद ही बयान फरमा सकता है, वही अपनी शान, जिसकी जितनी आला अरफा मेरे रब की शान, जितनी फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए शान व रफा ना लक जिक्रक, उनके जिक्र को बुलंद कर दिया अल्लाह पाक। मैं कुर्बान कुर्बान, मुझ जैसी एक तिफले मकतब यहां पे बैठ के उसके करम की इंतहा है कि उसने जज्बा दे दिया, ताकत दे दी। हम चाह भी नहीं सकते उसकी चाह के बगैर, उसी की चाहत है जो हम सब यहाँ पे खूबसूरतियों का सफ़र तय कर रहे हैं। यकीन करें, बड़ा रब के करीब होने का जब मौका मिलता है तो आंखें बरस पड़ती, बड़ा समझाती, बड़ा रोकती, नहीं रुकती, क्या करें, सनद लेनी है ना अल्लाह पाक से खुशनुदी की। और यकीन करें, आज मैंने तहैया किया कि तोशाए आखरत लेना है रब से, कि मेरा रब जब उसके हुजूर हाजिरी हो तो ये मैं तो एक खाकसार जर्राए बेआब, और हम सब जब उसके हुजूर पहुंचे तो वो खुद रब्बे करीम ये देखे कि मेरे बंदे

और इंशाल्लाह अभी ये आयते मुबारका जो है इसका भी सिलसिला जोड़ते हैं, इसकी तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है मेरे सामने, आइए नियाजमंदी से, आजजी से ये कलाम भी सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, सुभान अल्लाह।

0: Master Jewelers, 93 Horsen Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: मुझे सामीन इकराम, ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर के साथ आप जुमा करीम की खसूसी नशरियात समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk, स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। जी बिल्कुल, आप सबकी आमद को हम खुश आमदेद कहते हैं और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया। शाम जी आपका पाकिस्तान से जो है हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना, इसको सराहना और हमें बहुत खूबसूरत फीडबैक देना। मैनचेस्टर से रुखसार अहमद साहब और मेरी जितनी भी फेलोज़, मेरे फैमिली मेम्बर्स, अहबाब, दोस्त अहबाब, सबका बहुत शुक्रिया। जो महबूब इलाही साहब ने जो कॉल की है, मैं उनकी बहुत बल्कि मशकूर हूँ कि वो अपने काम के दौरान कीमती वक्त में से वक्त निकाल के कॉल बना रहे थे, तो मैं बस वो प्रोग्राम को तरतीब देने में थोड़ी सी मशगूल। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, तसल्ली से कोई फरमाइश भी कर सकते हैं। यकीन करें कि वो कुछ आज जी हमारे दूसरे ये जो एडवर्स का कंप्यूटर जो है वो कुछ अपने अंदाज दिखा रहा था। मैंने कहा ये रेडियो की टीम का सारा मामला है, मैं तो आंख बिछा के चुपके से अपने प्रोग्राम में लगी रहूं और मुझे क्या है भाई। माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा बढ़ गया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हमें जो फरमाइश की गई है बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम है। शाम जी ने पाकिस्तान से हमें बहुत ही खूबसूरत एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं होल्ड ऑन किए हुए इंशाल्लाह इस वाक़े के बाद, फिर दुरूद व सलाम के बाद वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। फिर आपको पता है सलाम का सिलसिला और दुआ हो जाती है। प्रोग्राम मुझे इस वक्त टाइम दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन हमने भी इस दौड़ते हुए टाइम की जो कहते हैं ना लगाम को पकड़ना है और हमने अपने खूबसूरत प्रोग्राम को जाज़बे नज़र बनाने के साथ साथ तस्कीन बख्श इंशाल्लाह ताला बनाना है। और अल्लाह की, अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में ढेरों ढेर दुआएं भेजनी हैं और दुआओं की कबूलियत का हमने इंतज़ार करना है, दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला से फरमाइशें इस्तगासा पेश करना है इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं वाकये की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत पस मंज़र हमारी आयते मुबारका का। तो तीसरे रोज़ भी जब साहिल ने निदा लगाई तो तीनों ने अपना खाना जब उस साहिल को पेश कर दिया, अंदाज़ा करें वो मासूम बच्चे और वो खूबसूरत नफूस, वो जाने खूबसूरत और साबरो शाकर हस्तियाँ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, तो कैसे ना अल्लाह ताला को उनकी अदा पसंद आती, कैसे ना मेरे रब्बे करीम की रहमत जोश में आती कि जब तीन दिन से लगातार वो पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर रही हैं हस्तियाँ, वो मासूम बच्चे हसनैन करीमैन, मैं कुर्बान जाऊँ उनकी अदाओं पर ही कुर्बान जाऊं, वो इतनी खूबसूरत हस्तियां। और जब मैं ये जो है आयते मुबारका का पस मंजर पढ़ती हूं जब से अब तक, तो मैं कहती हूं ये खुशबख्त हस्तियां जो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं हर हालत, हर हालत में, तो यही है फिर अल्लाह ताला ने जो है इनके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे और जन्नतों के वारिस बना दिया। मैं कुर्बान जाऊँ, अगर इस टॉपिक पे जाऊँगी तो बहुत तवील हो जाएगा मेरा टॉपिक, जो मौला अली अलैहिस्सलाम जो वलियों के इमाम, खातून जन्नत वो जन्नत की औरतों की सरदार, और नौजवाना ने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन, और बाबा नाना जो है वो शफात उम्मत के करने वाले, मैं कुर्बान जाऊँ। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारक उतारी उन हस्तियों के लिए कि ये हैं वो हस्तियाँ जो अल्लाह की चाहत में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो अपनी भूख और प्यास का जो है वो परवाह नहीं करती, और तो और भाई वाकई करबला जो इनसे जो है वो वाबस्ता हो चुका, वाकई करबला जो है उसने साबित कर दिया, तो फिर ये बहुत तवालत पकड़ती है इनकी मासूमीन की बातें, मेरी जान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान मेरे आका की शान पर। अजमत वो कहते ना जिंद

मोहतरम सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर बहुत ही खूबसूरत जुमा करीम की नशरियात जारी और सारी। थोड़ी सी माजरत ख्वाह हूँ कि कुछ थोड़ा डिले हो रहा है। कुछ आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम कुछ समटाइम्स ऐसे हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया बैकग्राउंड में। एनीवे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे लास्ट दौरानिए की तरफ। और ये दौरानिया जो है हमने प्रोग्राम को समेटना है। आप हमारी वेबसाइट brafrationradio.co.uk से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारी जो कॉल्स हैं लाइन 01274306677 पर भी हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं। जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें कोई फरमाइश करें और हम पूरी ना करें। और हम मैं तो इस वक्त सबकी मशकूर और ममनून कि आप माशाल्लाह इतनी दिलजमई से प्रोग्राम जो है वो समात फरमा रहे हैं। हमारा सिलसिला जो है इस प्रोग्राम का वो राहत बख्श और जिसे कहते हैं फरहत बख्श और आसूदगी देने वाला। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह करीम की ढेरों ढेर शुक्र गुज़ार के मुझे वो अल्फाज नहीं कीमती मिल रहे कि मैं अपने रब करीम का शुक्र अदा करूँ कि जिसने इतनी खूबसूरत साथें हमें नसीब अता फरमाई। और ये कलाम जो है जिन्होंने पेश किया है हमें श्याम जी ने पाकिस्तान से ज्वाइन करके। और मैं कहती हूँ कि ये नात तो मैं बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, इसे लुत्फानंदोज़ होती हूँ। और ये कलाम जो है इस वक्त वैसे भी जो हस्ती हमारे सामने है नात खां है, आप उनकी आवाज़ में भी सुनेंगे तो आपको लुत्फ आने के साथ साथ पता चलेगा कि जी बेशक जो हमारे नात खां बहुत माशाल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने आवाज़ की खूबसूरतियाँ अता की हैं, तो ज़ौक़ो शौक़ और जज्बा भी एक होता है, वो अता किया है माशाल्लाह इश्क़ो मोहब्बत का। तो उस जज्बे में डूब के जब पढ़ते हैं तो क्या ही बात हो जाती है। बस अब मैं सरप्राइज़ रखूँ, आप खुद ही जान जाएंगे। तो इस वक्त फिर ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समात फरमाते हैं। मैं तो एक वैसे शेर पढ़ना था लेकिन वो शाह जी हमारे पास करें। हमारी रेडियो टीम इस वक्त मुंतजमीन जो है वो लगे हुए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसलिए बेहतर है कि ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आप हमारे बहुत ही मोहतरम नात खां सरप्राइज़ रखती हूँ, सुनिएगा। और इंशाल्लाह ताला जहाँ फरमाइश करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी तो वहाँ सुनाने वालों ने, जो सुनाने वाला नात खां है वो भी इंशाल्लाह ताला नात का हक अदा करेगा। तो आइए हम भी दिल जमई से ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएं।

0: हाजिर का हूँ इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि पूरी महफिल का ही यही हाल होगा इंशाल्लाह ताला, आमीन। और यही हमने कैफियत और इश्क व मस्ती के जो हमारे इस वक्त रंग हैं, इश्क व मस्ती के जज्बात हैं, अपने आकाओ मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने हैं। मैंने ये होल्ड ऑन की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस वक्त हमें छोटी सी ब्रेक पर जाना होगा, कंप्यूटर सिस्टम, वो कंप्यूटर टीम लगी हुई थी इसको बहाल करने में, तो इसलिए फिर मैंने वो अशार जो है नात के रोक लिए। तो अभी आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह ताला हम ये जारी व सारी रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की अक्कासी, हमारे जज्बात, हमारे इश्क के जज्बात, इश्किया जज्बात जो हैं वो आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए। और बहुत खूबसूरत मेरे पास इस वक्त अशार का ज़ख़ीरा है, क्या करूँ कि वक्त की किल्लत है। तो इंशाल्लाह ताला ये जज्बात और ये कलाम जारी रखेंगे आफ्टर द ब्रेक। चलिए चलते हैं एक ब्रेक।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274-48-8877।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274-477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274-491-442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर।

और जैसा उन्होंने समझा है ना ऐसा हमने पढ़ा दी नहीं। जैसी हदीस है जैसी अहादीस है तो अल्लाह तो पढ़ी तसव्वुर नहीं है हमारा।

तमाम उम्र कहीं नात नात फिर न हुई, ऐ तमाम उम्र कहीं नात आप गवाह हैं, तमाम उम्र कहीं नात फिर न हुई। गरीब फिक्र हूँ आका माफ कर दीजिए,

शाह साहब का शेर नहीं है, कोई और मेहर अली है। वो कहते चुप कर मेहर अली कहते जा नहीं बोलन दी। वो तो चुप कर गए लेकिन आशिक चुप होते नहीं। इमाम

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 a.m. and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए।
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
6: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार।
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर। रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679।
3: safewayrider.co.in UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsen Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इसे इस वक्त सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है और वो आज की इस रूह परवर और ईमान अफरोज महफिल रोशनी में शरीक होना चाहें तो हमारे महफिल में शामिल होने के लिए आर जे रिफत अब्बास पर जाइए और एक मरतबा लाइक कर दें, फिर आप हमारी नशियात में, लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस रुख परवर और ईमान अफरोज महफिल रोशनी का हिस्सा बनना चाहें तो हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

जो उस आकान रसूल अकरम अभी अभी हमारी बज में तशरीफ़ लाए हैं, आज सर फहरिस्त हैं लिया पंजाब पाकिस्तान से। हमारे मोहतरम लिसनर सात समंदर पार से तशरीफ़ लाकर वो हमारी हिम्मत अफजाई फरमाते हैं, जनाब नज़ीर अहमद साहब। और उन्होंने तमाम ही अहले ईमा की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और जुम्मतुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद भेजी है। आपको, आपके अहले खाना को, दोस्त अहबाब को हमारी जानिब से, तमाम सामीन की जानिब से वालेकुम अस्सलाम और जुम्मतुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। तशरीफ़ लाए हैं रियाज साहब ब्रेडफोर्ड की इस हसीन वादी से, मौजूद हैं डॉक्टर माहरुख साहबा ब्रेडफोर्ड की इस हसीन वादी से। और आप तमाम अहबाब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार, दुआएं और जुम्मतुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद भेजी है। अब वक्त हुआ है हम लिया पंजाब से आए हुए अपने मेहमान जनाब नज़ीर अहमद साहब का हदिया नात बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करें। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, और उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी जिया है, याद सुल्तान तैबा के सदक़े मेरा सीना है मिसले नगीना, और मैं गुलामे गुलामान अहमद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, और मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये बदल जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा हैं मेरे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिया पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान का नजराना लेकर हाजिर होते हैं इस दुआ के साथ कि खुदा बंद करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अकदस में इसे कबूलियत का शर्फ बख्शे।

हेलो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो है, तीन मिनट की है और इसके बाद कमर्शियल है इसलिए। हाँ, तीन मिनट कैसे करते हैं वो कव्वाली जो आपकी नात है 12 मिनट की, तो कमर्शियल के फौरन बाद।

0: Radio. 1413 AM and online.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
3: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
2: UK।
4: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए एशियन रेडियो।
2: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: Adosto, ab waqt hua hai hazb-e-wada. Dr. Mahrukh Sahiba, aapka hadiyanat bahuzure sarvare kainat pesh karne ki saadat kar rahe hain. ऐसे खूबसूरत नात खां और आपका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन नात खानों में होता था और जो नात डॉक्टर साहब आपने आज मुंतखब की है, इसने दुनिया के चार कोनों में बे इंतहा मकबूलियत और शोहरत हासिल की। और मोहम्मद यूसुफ मेमन मरहूम के बाद सईद साहब का शुमार, जी हाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ हज़रत सईद हाशमी दामन बरकातहु मुद्दज़िले अलैह मरहूम का, जो पिछले दिनों हमारा साथ छोड़ गए। सो आइए, डॉक्टर साहब कहती हैं उन्होंने याद दहानी कराई है नसीरुद्दीन नसीर गोलरा शरीफ हजरत नसीरुद्दीन नसीर गोलरा शरीफ फरमाते हैं कि रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग, और आ जाएगा एक रोज़ भी तैबा से बुलावा, हर वक्त मदीने की दुआ, मांग अरे मांग, भर जाएगा कशकोल मुरादों से तेरा भी, बनकर मेरे आका का गदा, मांग अरे मांग। तो आइए मैं डॉक्टर महरुख साहबा आपका हदिया बहुजूर सरवर कायनात पेश कर रहा हूँ हज़रत सईद हाशमी दामन बरकातहु मुद्दज़िला अलैह मरहूम की आवाज़ में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर आपके लिए नशियात पेश कर रहा है और खुसूसी तोहफा आज के सैयदुल अयाम जुमतुल मुबारक का आप सबके नाम। अभी अभी जो अहबाब हमारी बज में शामिल हुए हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी ढेर दुआओं के साथ और आप सबके लिए मोहब्बत भरा सलाम और जुमतुल मुबारक तशरीफ लाई हैं हमारी प्यारी सी बहना ब्रेडफोर्ड 18 से शहनाज। साथ ही साथ हम ज़रा फ़िक्रमंद हैं कि हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर चौधरी रुखसार अहमद साहब हमारी बज में तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। खुदा करे कि वो सेहत व आफियत से हों। मसरूफियात अगर हैं तो वो तो कोई बात नहीं लेकिन तबीयत सेहत सही होनी चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने करम और फजल के साए में रखे। कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद इंशाल्लाह हम अपनी प्यारी सी बहना शहनाज का हदिया नात बहुजूरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। साथ ही साथ अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर और बहुत ही हसीन आवाज़ के मालिक महबूब इलाही साहब। उन्होंने तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और जुमतुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद पेश की है और कहते हैं कि हम कमज़ोर और ख़ताकार हैं, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हम पर रहम फरमा, हमारे दानिश्ता गैर दानिश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें खसारा उठाने वालों में शामिल मत कर, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से भर दे, आमीन सुमा आमीन। बढ़ते ही कमर्शियल के वक्फे की जानिब और उसके बाद शहनाज प्यारी सी बहना अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा तोहफा बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274-48-8877।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274-477257 दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885-428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274-491-442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: और दोस्तों, आज हमारा बैकग्राउंड आपको जरा बहुत गड़बड़ाया हुआ लग रहा होगा, कुछ थोड़ी सी चेंजेस की हैं, इंशाल्लाह वही सिलसिला दोबारा बहाल हो जाएगा। मैं शाह साहब को आज बता दूंगा तो वो चेंज कर देंगे, लेकिन है वही जो हमारा कलाम है। लेकिन शायद पुराना होने की वजह से रिकॉर्डिंग ज़रा सा आपको उसमें भरभराहट सी महसूस होगी, कोई बात नहीं है। मकसद हमारा उनकी तारीफ से है और कसीदा बुर्दा शरीफ है ये, और इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब हम चल रहे हैं अपनी प्यारी सी बहना शहनाज का हदिया नात बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी बहना के सुहाग को सलामत रखे, नजरे बद से बचाए, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। इंशाल्लाह इसके बाद हम जनाब महबूब इलाही ने हमद बारी ताला अपने दोस्तों अहबाब और जानने वालों के नाम और बारगाह इलाही में पेश करने का फ़ैसला किया है, वो लेकर हाजिर रहेंगे। छा गए अब्र करम, हो गए ख़त्म सितम, मिट गए रंजो अलम। छा गए अब्र करम, हो गए ख़त्म सितम, मिट गए रंजो अलम। आ गए शाह उमम, लिल्लाह अब कर दो करम। ऐ मेरे सरवर दी, आप सा कोई हसी, दोनों आलम में नहीं हुस्न यूसुफ की कसम। छोड़ कर आपका दर जाए सरकार किधर, सदका हसनैन का दो वरना मर जाएंगे हम। छा गए अब्र करम, हो गए ख़त्म सितम, मिट गए रंजो अलम। आ गए शाह उमम, दिल्लाह अब कर दो करम। तो आइए बारगाह नबवी अपनी प्यारी सी बहना शहनाज और उनके अहल खाना का हदिया लेकर चलते हैं, और उसके बाद वो हमद बारी ताला जिसे हमारे महबूब इलाही साहब अपने दोस्त अहबाब की जानिब से, जानने वालों की जानिब से बारगाह इलाही में पेश करना चाहते हैं।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी। अब हम आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान से। हमारे हमराह मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब और बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया अपनी और अपने अहल खाना की जानिब से पेश करने की सआदत हासिल करना चाहते हैं, जो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हो रही है। और उनका सलाम हम अपने तमाम सामईन और नाज़रीन का भी इसमें सलाम शामिल है। बारगाह नबवी में एक ऐसी मकबूल नात जिसने अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत की बुलंदियां तय की और शाकान रसूल के दिलों में पस गई, और जिसे तहरीर किया हज़रत डॉक्टर नवाज़ देवबंदी ने। और ख़ुदा का फजल व करम, ये देखिए न सिर्फ आपने नात तहरीर की बल्कि अल्लाह ताला ने आपको लहन दाऊदी भी अता फरमा दिया कि ये नात सुनने वालों को वजद में ले आती है। सारे नबियों में रहमत लकब आप हैं, शान अरफा है आली नसब आप हैं, सारी दुनिया मुनव्वर हुई आपसे, कैसे कह दूँ कि माह अरब आप हैं। फैसल चौधरी साहब हिंदुस्तान से अपने अहल खाना के हमरा बारगाह नबवी में अपना सलाम और तमाम सामीन और नाज़रीन का भी सलाम इसमें शामिल है सआदत हासिल कर रहे हैं। फैसल चौधरी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
1: सलाम सलाम। दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफा से लगाओ दिल। दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफा से लगाओ दिल। ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। ये जो दिल है इसको बनाओ दिल।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूँ रिफत अब्बास। आदाब उन तमाम महबाब की खिदमत में जो अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं और उन्होंने प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद हम बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब ओल्डहम से उनका हदिया पेश करेंगे। आप भी अगर हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाना चाहें और हमें सुन रहे हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
2: 01274201679। UK।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए एशियन रेडियो।
2: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
4: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
4: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsen Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: और आइए दोस्तों, हमारे मोहतरम लिसनर और हमसे अयूब चौहान साहब का हदिया नात लेकर चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल उनकी शरीक हयात अपने साहबजादे के हमराह हज पे रवाना हुई हैं और हमारे अय्यूब भाई तो माशाल्लाह अलहाज हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और भाभी और आपके साहबजादे के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत के साथ लेकर जाए, खैर वाफियत से लाए और आसानियाँ हज में फराहम फरमाए और कबूलियत का शर्फ बख्शे। अय्यूब चौहान साहब का तोहफा हाजिर है।
7: नवाजता है जो सबको

मैं जीना चाहता हूँ बाबा, क्योंकि मैं इसे बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। अम्मी हमेशा कहती है, तू जहां जहां चलेगा खुदा साया बनकर तेरे साथ होगा। आज मैं मुड़कर देखना चाहता हूँ।

आइए दोस्तों, अब हम अपने मोहतरम लिसनर रियाज साहब और उनके अजीज़ जान दोस्त महमूद साहब का हदिया नात बहुजूरे सरवरे कायनात लेकर चल रहे हैं। रियाज साहब, तुहाडी आमद साढ़े प्रोग्राम विच बड़ा करम है। तुहाडा मोहब्बत चाहत प्यार है। अल्लाह ताला तुहानू हयाती दे, खैर नाल रखे, सेहत नाल रखे, ते अपने हिज़्ज़ोमान विच रखे। तुहाडा नजराना ते तुहाडे फ्रेंड महमूद साहब दा नजराना लैके बारगाहे रिसालत मां विच जा रहे हां। हबीबा उच्ची शान वाले आ, जे तू आयो ते बहारा आईया। अल्लाह नू तू प्यारा लगना है, तायों रब ने भी खुशियां मनाईया। जुल्फ तेरे दे कुंडल सोने, मोह लेंदे ने दिल मन मोहने। चंद सदा लगदा फिरे, तेरे मुख दियां वेख सफाइया। चंद सदा लुकदा फिरे, तेरे मुख दियां देख सफाइया। अरब शरीफ दिया सरदारा, आमना पाक दिया दिलदारा। तेरे जे सोने सोनिया कदों, जमदियां नित नित माइया। तो आइए, आपका तोहफा रियाज साहब और आपके दोस्त जनाब महमूद साहब का तोहफा बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।

और दोस्तों, हमारी मोहतरम और बुजुर्ग और मामर तरीन लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब अपने अहल खाना के हमरा हमारी बर्द में शामिल हैं। नागुजीर वजूहात की बिना पर उनका पैगाम मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन ख़बर पहुंच गई और उनके हमरा मौजूद हैं जनाब अनस, जनाब बाबर, जनाब खुसरो, मोहतरमा अर्शीबी, मोहतरमा निघत साहिबा और गुलशन में महकते जो फूल हैं, जिनमें अशमल मियाँ, उनकी हस्ती मुस्कुराती बातें बनाती बहना मैना जैना और नन्हे मोहम्मद दयान शामिल हैं। कहते हैं कि हमारा भी सलाम तमाम आपके सामीन और नाज़रीन तक और जुमातुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। हमारा भी सलाम बारगाह नबवी में पहुँचाइए। सलाम उन पर कि जिनसे है नज़्मे कौनो मकां, सलाम उन पर कि जो हम बेकसों का आसरा, सलाम उन पर कि जो शाहे दो जहां ठहरे, सलाम उन पर कि जिनका नहीं कोई मिसल, सलाम उन पर कि जो हादिए जमा ठहरे। आपका हदिया नात बहदूर सरवर कायनात अलहाज शबी अहमद नकवी साहब, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे, आपको सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप यूं ही हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। आमद का बहुत शुक्रिया।

0: मुलाजा कीजिए जा।
1: दो दो महीने जिनके घर में आग न जलने पाए, दो दो महीने

मेरे दोस्तों, अगर प्यारे नबी के प्यारे तरीके हमारी जिंदगी में आ गए तो यकीनन ये मेरा शेर जो आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूँ यकीनन सही होगा इंशाल्लाह।

0: Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD88NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनिंगम सुपर स्टोर

आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूं रिफत अब्बास। आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मुझको मेरे खुदा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, इस गुनाहगार पर भी निगाहे करम खातिमुल अंबिया और क्या चाहिए, जिसने मांगा है जो उनके दरबार से, मिल गया मिल गया मिल गया और क्या चाहिए। बेरफुट 3 से यूनुस साहब हमारी बंद में शामिल हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन तक, और जुमतुल मुबारक की मुबारकबाद के बाद आपका तोहफ़ा बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में लेकर हाजिर हैं। खुदावंद करीम अपने महबूब के दरबार अक़दस में इसे कबूलियत का शर्फ अता फरमाए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अभी अभी हमारी बज में शामिल हुए हैं हमारे बहुत ही मोहतरम लिसनर महमूद भाई, आप बोल्टन से हमारे हमराह मौजूद हैं और एक खूबसूरत कलाम सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जो हम थोड़ी ही देर बाद अपने तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में उनकी जानिब से पेश करेंगे। महमूद भाई बोल्टन से तशरीफ़ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अभी तो हम चल रहे हैं हाशमी हाउस, जहाँ पर अमरोहा की आन बान शान दीनी इल्मी अदबी शख्सियत और मारूफ समाजी रुकन जनाब डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब महफिल सजाए बैठे हैं। पूरे अमरोहा से उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं और लबों पर दुरूद पाक के नजराने हैं, हवाएं और फ़ज़ाएँ दुरूद पाक के नजरानों से और इत्र बखूर और अगरबत्ती से महक रही हैं। तमाम अहबाब उस शाकान रसूल हाशमी हाउस की छत तले सर झुकाए जो इनकिसार के साथ लबों पर दुरूद पाक के नजराने सजाए आज की इस महफिल रोशनी में शामिल हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए, इस कदर हसीन महफिल सजाते हैं और लोग अमरोहा भर से जौक दर जौक आज की इस महफिल में चले आते हैं और उनकी मावनत सालार गाजी साहब मारूफ मकबूल और हर दिल अज़ीज़ नौजवान सहाफ़ी किया करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़रे बद से बचाए और उनकी मावनत सालार गाजी साहब मारूफ मकबूल और हर दिल अज़ीज़ नौजवान सहाफ़ी किया करते हैं। अल्लाह ताला

دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں

और दोस्तों अब वक्त हुआ है प्रोग्राम का आखिरी तोहफा, तशरीफ लाए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया बोल्टन से हमारे महमूद भाई, और ये खूबसूरत कलाम उन्होंने आप तमाम सामईन और नाज़रीन के लिए मुंतखब किया है, जो हम प्रोग्राम के आखिरी तोहफे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम अहबाब का कि जिनकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए, इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब रोशनी इख्तिताम पज़ीर हुआ, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत के पैगाम पर रिफत अब्बास को इजाज़त दीजिए। महमूद भाई आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह।

मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी की जान है, फिर भी बशर को कितना गुमान है। इंसान, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मौत को भूल बैठा, गफलत में सो गया। याद रख, ये सांसें अमानत है, तेरी जागीर नहीं, कफन में जेब नहीं होती, और कब्र में जा

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटली लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
3: safewayrider.co.in UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future.
5: You're listening to Bradford Asian Radio.
6: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 488 77
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885-428-349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
6: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
8: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
8: मैनिंगम सुपर स्टोर

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD88NG, फोन 01274 477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
3: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679। UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD88NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 81/83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
6: दुल्हन वो जो पिया मन था,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
6: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679। UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 14:13 AM and online.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 4877
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
3: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
3: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428 349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
3: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
3: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
3: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
6: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
7: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनीगाम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनीगाम सुपर स्टोर मैनीगाम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
7: मैनीगाम सुपर स्टोर

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
5: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: UK।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future.

0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 48 77।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD9 5VR, 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
6: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274 201 679।
3: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 1 to 1 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford?
9: Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: Listen on your PC or laptop. The best Asian music.
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: Bradford Asian Radio, medium wave 1413 AM, Bradford Asian Radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 4877।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD9 5VR, 01274 491 442,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
6: बस ट्रक फोकलिफ्ट
7: टैक्सी लाइसेंस,
6: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
6: 01274 201 679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 07 8। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD9 4QU, 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
10: 1413 AM and online.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
10: 1413 AM and online.
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
2: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबी रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD88NG, फोन 01274472577। दुबई
4: ज्वेलर्स। डू यू नो देयर आर 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan. Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
5: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
5: मैनिंगम सुपर स्टोर।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, other branch, the Mughal Emporium, 1304 Leeds Road, Bradford 3.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.